Live 106.3 FM Gio Bendaz. सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
1: बिंदास
2: ओसम
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या बात ये बात है
2: ओसम awesome.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Arijit Singh aur Shilpa Rao ki awaaz mein chale a beautiful track on Radio 106.3 FM. Tanisha aage ji aapke saath bindaas mornings lekar a very good morning meri jaan. Thursday ka din August 20 khush to bahut hoge tum hai, main bhi bahut khush hu kyunki weekend is finally here. Yes sir. So kya plans hai weekend ke, uske bare mein hum baat mein baat karenge. Pehle hum baat karenge aapka kal ka din kaisa raha. I hope sab theek tha. और आज के क्या प्लान्स हैं और अभी क्या कर रहे हैं, अगर ऑफिस के लिए ऑलरेडी निकल चुके हैं और ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो फटाफट से एक मैसेज कर दो 3311-1063 पर गुड मॉर्निंग का प्यारा सा. और नहीं निकले हैं, घर पे हैं, रेडी हो रहे हैं या फिर अभी उठे हैं और अभी वक्त है आपके पास तो फोन उठाओ और एक प्यारा सा मैसेज भेज दो यार. दिन बना दो मेरा भी आज. मैं तो देखो बनाने वाली हूँ आपका दिन क्योंकि कमाल गाने लाइंड अप है जी. मिर्जापुर द मूवी से वारू फॉरएवर, इसमें रोमी के साथ साथ श्रेया घोषाल भी हैं.
2: फिर ले आया मजबूर क्या कीजे.
1: होए होए, समझ रहे हो आप आज सुबह की फील्स क्या है. हाँ जी, काफी रोमांटिक है.
2: सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो आए तो आए तो.
1: सोच रहे हो सोचने में क्या जाते हो. कहते हैं ना कि जिस चीज के बारे में आप सोचोगे लाइफ आपको वही लाके देगी, तो सोचते रहो अच्छी चीजें अपने लिए. हाँ जी, और मैं यहाँ पे आपके मैसेजेस मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो वेट कर रही हूँ, फटाफट से आ जाओ 3311-1063 पर और सुन रही है रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

0: Hi, मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय. You're listening to Radio Olive. Jio Bindas.
1: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
2: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: दनिशा रेखा भारद्वाज के आवाज में फिर ले आया दिल फ्रॉम द मूवी बर्फी. कितना सुंदर गाना है यार. और रेखा जी की आवाज में ना कुछ अलग ही जादू है. बाय द वे डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेखा जी एंड विशाल भारद्वाज. ओ इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बताऊंगी कुछ देर में. लेकिन पहले हम पढ़ते हैं मैसेजेस. हां जी, सो नाजरी जी का मैसेज आया है. गुड मॉर्निंग. Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success. और I think ये वाला जो फंडा है ये हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में हमें you know implement करना चाहिए, this working together, staying together. Okay. और अबरार जी का भी मैसेज आया है. Good morning, have a beautiful day. संधू जी का भी मैसेज है. Good morning, Dee. Have a wonderful day. Start your day with a smile and share the joy. Harpal Sandhu, the consecrated. And उन्होंने ऐसे sunrise की photo भी भेजी है. Beautiful यार. आज थोड़ा मुझे आते हुए weather okay लगा. Like it's not extremely hot. Though notification में तो कहा गया था कि काफी गर्मी होगी. But let's see. अभी तो दिन शुरू हो गया है ना. आगे आके देखते हैं क्या होता है. शशिकांत पाटिल जी का मैसेज है. गुड मॉर्निंग. यादें और अपने कभी पुराने नहीं होते, बस सुबह सुबह उन्हें याद करने का अंदाज नया होना चाहिए. हाय हाय, इतनी सुंदर बातें कर लेते हो यार आप लोग ना. जाकिर मोहम्मद जी का मैसेज आया. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम लिसनिंग टू यू राइट नाउ. थैंक यू सो मच जाकिर मोहम्मद जी मैसेज करने के लिए. कहाँ से सुन रहे हैं ये भी बता दीजिए. और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं, क्या हालचाल है? और बिलाल जी का भी गुड मॉर्निंग आ गया. और हैप्पी वीकेंड भी आ गया. देखो मैं अगर याद दिलाने से चूक जाऊँ ना कि आज वीकेंड है, तो आप याद दिला देते हो. बस यही बात मुझे अपनी बड़ी अच्छी लगती है आपकी और मेरी दोनों की. हाँ जी.
1: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल.
0: आय हाय.
1: लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस. गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल. लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस.
0: वेरी गुड वेरी नाइस ही होगा हमारा दिन भी जी इंशाल्लाह. सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू. दनिशा के साथ है आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर. जियो बिंदास. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

0: Solid 106.3 FM Gio Bendaz.
1: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
2: कॉल 7022525.
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडो ऐप पर. Experience more with ओरेडो. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड इट टुडे.

0: तनिषा
1: चोर निकल के भागा मूवी से बहुत खूबसूरत गाना जानिए ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो चुका है मेरे फेवरेट और शायद आपके भी फेवरेट एकदम आसान सवाल लेकर आई हूँ अगर कोई रूम के अंदर बीमार हो जाए तो उसे क्या कहेंगे अगर कोई रूम के अंदर बीमार हो जाए तो उसे क्या कहेंगे एक वर्ड में आपने मुझे बताना है एंड बेसिकली दैट वर्ड हिंदी इंग्लिश इट कैन बी एनीथिंग लाइक आई डोंट नो इट्स बेसिकली अ नेम अब इससे ज़्यादा हिंट नहीं दे सकती यार मैं प्लीज सोचो अगर कोई एक रूम के अंदर बीमार हो जाए तो उसे क्या कहेंगे 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर अगर कोई रूम के अंदर बीमार हो जाए तो उसे क्या कहेंगे ध्यान से मेरे सवाल पे गौर कीजिए उसी में जवाब है सेंडिंग फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू चुनरी चुनरी लेट्स गो है जवानी तो इश्क होना है मूवी से स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास
0: Radio

0: दास मॉर्निंग आरजे तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

यार मैं भी एक्साइटेड हो रही हूँ यार, ये गाने सुन के मजा आने वाला है। ढेर सारी बातें अभी भी बाकी हैं, मैसेजेस आप करते रहिए 3311063 पर। फिलहाल बहुत सुंदर गाना रेखा भारद्वाज और राघव की आवाज में भेज रही हूँ, हम तेरे होते तो, फ्रॉम मुसाफिर कैफे। स्टे ट्यून्ड एंड रेडियो बिंदास।

0: से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
1: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
1: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
2: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At the

0: Olive Sunu Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
1: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस्तन निशा को बिंदास मॉर्निंग में
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Tanisha. Love John Juar ne haga kar ki awaz mein London to Magda only on Radio 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindas morning chal rahe hain yahan par.
2: Oh, hamse pucha weather, I like the weather.
1: No, I don't. Because वैसे I said कि आज काफी better है. अभी का क्या हाल है ये आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि मैं तो स्टूडियो पर बैठी हूँ. एकदम मस्त एसी चल रहा है यहाँ पे. मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है बाहर का हाल. Right now the temperature is 37 degrees and it feels like 40, which is okay fine. चला लेंगे. हीट इंडेक्स जो है वो 42 का है और आज काफ़ी विंडी होने वाला है. 17 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से विंड चल रही है राइट नाउ. तो एंड मेट डिपार्टमेंट ने भी कहा था कि 20 और 21 अगस्त को बहुत विंडी और डस्टी होगा. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग और बाहर निकल रहे हैं और आपको एलर्जीज वगैरह हैं. सो कीप अ मास्क विद यू सो दैट यू नो वो ट्रिगर ना हो जाए. अपना ख्याल रखा करो ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट हो आप इस बात को कभी नहीं भूलने का है. बाकी हैव एन अमेजिंग डे यार और स्टे हाइड्रेटेड. लाइट सा खाना खाइए और स्वस्थ रहिए मस्त रहिए. हाँ जी सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे. स्टे ट्यून्ड बिंदास.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: Tanisha.
1: आतिफ असलम और अलीशा चुनाई की आवाज में अजब प्रेम की गजब कहानी से बड़ा ही सुंदर गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर
2: वेलनेस फिक्स
1: एकदम इजी फिक्स लेकर आई हूँ मैं आपके लिए. सो देयर इज दिस स्टडी. वैसे ये कुछ नई डिस्कवरी नहीं है, ये हमें पता है. जितना हम नेचर से रूटेड रहेंगे, उससे जुड़े रहेंगे, उसमें वक्त बिताएंगे, उतना ज़्यादा हम बेहतर महसूस करेंगे, राइट? और स्टडीज भी काफ़ी होती रहती हैं. देयर इज़ अनदर स्टडी विच सेज कि अगर अर्बन स्पेसेस में आप यू नो ट्रीज के पास बैठ रहे हो, पेड़ों के पास बैठ रहे हो, और ये जो पक्षी हैं, यू नो ऑल दीज बर्ड्स, इनके चहचहाने की आवाज़ अगर 10 मिनट भी आपने एक दिन में सुन ली ना, दैट इज़ अ लॉट फॉर यू. इट विल लोअर योर स्ट्रेस एंड इट विल इम्प्रूव योर मूड. और ये टेस्ट किया गया है, ठीक है? इट हैज़ बीन टेस्टेड ऑन फ्यू पीपल. उसके बाद कहा कि अरे भाई ये तो एक्चुअली वर्क करता है. एंड आई एब्सोल्युटली अग्री विद दिस. यू गेट सम काइंड ऑफ, ऑब्वियसली यू आर गेटिंग फ्रेश ऑक्सीजन देयर, ऑल्सो यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ यू नो पीस, दैट कामनेस वाला फील, सेरेनिटी. और ग्रीनरी को देख कर वैसे ही हमारा जो मूड है वो एकदम काम हो जाता है. अगर आप बहुत हाइपर हैं, एंक्शियस हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो वो उसको काम करने में हेल्प करता है. दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेड कि यू नो घर में प्लांट्स लगाना भी बहुत अच्छी बात होती है. सो अगर आपके पास मौका है, आप ये कर सकते हैं. आई वोंट सजेस्ट कि ऐसे भरी धूप में जाकर बैठ जाओ, नो प्लीज डोंट डू दैट. बट जब भी मौका मिले, डू स्पेंड सम टाइम इन नेचर, कनेक्ट विथ नेचर. उससे रूटेड रहेंगे ना तो यू विल फील डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी. द ऑरा विल चेंज, यू नो द पॉजिटिविटी एंड द वे यू लाइक योर परसेप्शन बेसिकली विल बी चेंज. ट्रस्ट मी ऑन दैट. सेंडिंग बहुत प्यारा गाना बेनी दयाल की आवाज में, और साथ में बहुत सारे आर्टिस्ट. सबके नाम लूंगी तो गाना खत्म हो जाएगा. तो गाना सुनते हैं. नजरें मिलाना, नजरें चुराना, फ्रॉम द मूवी जाने तो या जाने ना, ओनली ऑन रेडियो ऑल ऑफ जियो. बिंदास मेरी जान.

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio All 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और बैक टू स्कूल का रिमाइंडर देने आई हूँ. अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी कर लो, ठीक है. All you have to do is go on our website, that is olive.qa. और अगर ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो मुझे मैसेज कर दो, आई विल सेंड इट टू यू. वहाँ पर आपको बैक टू स्कूल का बैनर नजर आएगा. उस बैनर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा एंड फिल दैट फॉर्म एंड दैट्स इट. यस, 27th ऑफ ऑगस्ट को हम दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक मिल रहे हैं अबू जिद्रा मॉल में फॉर लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ अमेजिंग गेम्स, चैलेंजेस, एक्टिविटीज फॉर किड्स. और स्कूल के पहले ये वाली पार्टी तो मैंडेटरी होती है, राइट. सो डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर योर चाइल्ड और एक बढ़िया शाम का हिस्सा बनते हैं साथ में. एंड जल्दी कर लो क्योंकि रजिस्ट्रेशंस आर अबाउट टू क्लोज मेरी जान. सुंदरे रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास.
2: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
2: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
4: Old Airport Road, Doha and Alcor.
3: Call 70222525.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
5: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the

0: मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: será? ਉਹ ਪੱਟ ਦੇ ਤੂੜਾ।
1: ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਂ Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas।
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
4: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
5: गुलराज सिंह
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
5: जियो बिंदास।
6: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
7: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning। Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler। Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।
8: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा।
1: तेरी बातों में ऐसा उलझा जी मूवी से अखियां गुलाब वाली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा के साथ है। आप बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर, और अगर वीकेंड का कोई प्लान नहीं बना है तो मैं बता देती हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं आप इस वीकेंड। सो FIVB बॉयज अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है Aspire Ladies Hall एंड अल अरबी स्पोर्ट्स हॉल में 19th August से लेकर, ऑलरेडी शुरू हो चुका है कल से, 29th August तक ये चलने वाला है। इसका टाइम है सुबह 11 से लेकर शाम 5, आप वो देखने जा सकते हैं। देन पॉ पेट्रोल बिग शो रेस्क्यू मॉल ऑफ कतर में हो रहा है। अपने बच्चों को अगर कहीं लेकर जाना चाहते हैं तो दिस इज सच एन अमेजिंग थिंग। ये आज से शुरू हो रहा है, 29 अगस्त तक चलेगा, शाम 5 बजे, 6:30 बजे और 8 बजे एट मॉल ऑफ कतर। एंड देन देर इज समर फन कैंप एट तवर मॉल, और ये कल से शुरू होने वाला है 5:30 बजे से, वहाँ ले जा सकते हैं आप अपने बच्चों को। देन वी हैव हाला समर शॉपिंग फेस्टिवल, तो चल ही रहा है बहुत सारे मॉल्स में, तो मौके पे जाओगे मार लो जी, बढ़िया बढ़िया डील्स मिल रही हैं। अलॉन्ग विद दैट कतर टॉय फेस्टिवल के एक्टिवेशंस भी चल रहे हैं काफ़ी सारे लोकेशंस पे, ये 30 सितंबर तक चलने वाले हैं, तो आप वीकेंड्स पे बच्चों को ले जाने का प्लान कर सकते हैं। कलर वर्स एक्सपीरियंस अगर अभी तक नहीं गए हैं तो डू गो एंड चेक इट आउट, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बड़ों को भी मजा आएगा और बच्चों को तो मजा आएगा ही, हाँ जी। एंड दोहा फेस्टिवल सिटी में मॉर्निंग जॉगिंग सेशंस हो रहे हैं, ये 31 अगस्त तक चलने वाले हैं, हर फ्राइडे को होते हैं ये। सो इफ यू आर यू नो फिटनेस एंथुजियास्ट और अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज अ गुड वन, राइट? आप मॉल में जाकर जॉगिंग सेशन का पार्ट बन सकते हैं। एंड 7:30 AM से लेकर 9 बजे तक ये चलता है सुबह फ्राइडेज को। सो जाइए, चेकआउट कीजिए और एकदम बढ़िया वाला वीकेंड स्पेंड करना। मैं बता दूं कुछ देर में कि मेरे वीकेंड भी आने वाला है। स्टे ट्यून्ड एंड जी बिंदास रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: Tanisha.
1: Tanisha. K3G से यू आर माय सोनी ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और कतर में जो म्यूजियम्स है ना, दे आर समथिंग एल्स. मतलब इतने अमेजिंग कॉन्सेप्ट और जिस तरह से वो बनाए गए हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. और उसमें एक और म्यूजियम ऐड होने वाला है, दैट इज दादू चिल्ड्रंस म्यूजियम ऑफ कतर. येस, सो अलविदा पार्क में आई थिंक इसका एक्टिवेशन होता था ईयरली, राइट? बट नाउ देर इज़ अ म्यूजियम जो कि इंटायरली डेडिकेटेड है चिल्ड्रन को, एंड इट इज़ बींग डेवलप्ड राइट नाउ बाय कतर म्यूजियम्स. और ये जो म्यूजियम है, इट इज डिजाइंड अराउंड द आइडिया ऑफ लर्निंग थ्रू प्ले, एंड दैट इज द बेस्ट वे आई थिंक. यू नो, इट एनकरेजेस चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर, क्रिएट एंड यूज देयर इमेजिनेशन. एंड वो जो एक फाउंडेशन होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है इससे. सो जो इसका आर्किटेक्चर है, इट इज इंस्पायर्ड बाय बिल्डिंग ब्लॉक्स विद इंटरकनेक्टेड ब्लॉक्स फॉर्मिंग द एक्सटीरियर अराउंड अ कवर्ड फोयर. सो यू नो, किड्स विल बी वेरी मच फैसिनेटेड बाय दिस वन. और इसमें इंटरैक्टिव गैलरीज होंगी, एक्टिविटी रूम्स होंगे, रेस्टोरेंट्स और कैफेज होंगे, एंड अ स्पेस डिजाइन टू एनकरेज क्रिएटिविटी एंड हैंड्स ऑन लर्निंग. सो ऑब्वियसली बहुत सारी वर्कशॉप्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एक्टिविटीज विल बी देयर. दादू का बेसिकली मीनिंग प्ले होता है इन अरबिक, एंड दैट्स द होल आइडिया ऑफ दिस यू नो म्यूजियम. सो इट इज रियली अमेजिंग जिस तरह से यू नो बताया जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ एक्टिवेशंस विल बी देयर और वो कैसा होने वाला है. इट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग एंड कांट वेट फॉर दिस वन. अलविदा पार्क में ये बन रहा है और अप टू 11 ईयर्स एज तक के बच्चे यहाँ जा सकते हैं, एंड इट इज अमेजिंग. या कतर की बात अलग है यार. इसी बात में एक बढ़िया गाना भेज रही हूँ आपके लिए, दिलेर मेहंदी और ऋचा शर्मा की आवाज में, गोल मूवी से बिल्लो रानी. स्टे ट्यून्ड, बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में.
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड इट टुडे.

KK और अलीशा चुनाव की आवाज में धूम से डोंट टच मी और टच मी काफी कंफ्यूज गाना था बट जो वाइब क्रेजी यू ऑल लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तो अलीशा आपके सैड बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर वैगी विजडम में आज हम बात करेंगे इंदिरा नुई की शी इज फॉर्मर सीईओ ऑफ पेप्सी और जब वो सीईओ बनी पेप्सी की एंड यू नो आफ्टर टू इयर्स शी वेंट बैक होम और उनके पेरेंट्स ने उनके लिए एक वेलकम पार्टी रखी जिसमें यू नो सबको बुलाया कि यू नो कम मीट माय डॉटर एंड ऑल अचीवमेंट है यार छोटी मोटी बात थोड़ी है राइट सो एवरीबडी वॉज देयर इन दैट पार्टी और जब वो सबसे मिल रही थी तो उन्होंने एक चीज़ देखी नोटिस करी कि सब लोग उन्हें तो कंग्रेचुलेट कर रहे थे उनकी इस अचीवमेंट पे सक्सेस पे लेकिन सब लोग उनके पेरेंट्स को भी इक्वली कंग्रेचुलेट कर रहे थे अप्रिशिएट कर रहे थे कि यू हैव रेज सच एन अमेजिंग डॉटर सच अ स्ट्रांग एंड यू नो ब्यूटिफुल डॉटर एज इन द करियर वाइज एंड द हेड स्पेस विच इज लाइक रियली अमेजिंग द वे शी थिंक्स हर पर्सपेक्टिव इन एवरीथिंग एंड पेरेंट्स वर रियली हैप्पी रियली प्राउड अबाउट दैट सो व्हेन शी केम बैक टू वर्क उन्होंने सोचा कि यार इट एक्चुअली मैटर्स अलॉट क्योंकि हमारी जो फाउंडेशन है वो तो पेरेंट्स से ही शुरू हो रही है ना हमारे जो एथिक्स है मॉरल्स है जो भी है हमने जो पाया है एंड व्हाट वी आर पुटिंग इन आवर वर्क वो सब हमारे पेरेंट्स की वजह से हो रहा है सो वी शुड बी थैंकिंग देम एंड इसलिए उन्होंने पेप्सी में एक पॉलिसी निकाली कि अब हमारे जो 400 एग्जीक्यूटिव्स हैं उन सब के पेरेंट्स को हम हैंड रिटन लेटर लिखेंगे यस हैंड रिटन और सब में स्पेसिफाई की जाएगी हर एक एग्जीक्यूटिव की यू नो जो भी खासियत है वट एवर दे आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल फॉर पेप्सी जो भी उन्होंने किया उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है सब कुछ लाइक अगर सपोजिटली मेरे लिए लिखा जा रहा है तो मेरी क्या खासियत है वो मेरे पेरेंट्स को बताया जाएगा एंड यू नो कंग्रेचुलेट किया जाएगा उन्हें कि तनीषा ने बहुत कमाल काम किया है पेप्सी में ये कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है एंड दिस एंड दैट एंड वो लेटर्स जब उन सब पेरेंट्स के पास गए दे वर सो हैप्पी दे वर सो ओवरवेल्ड कुछ वक्त तक इंदिरा नुई के कॉल्स लाइक फ़ोन कॉन्स्टेंटली बजता ही रहा बिकॉज पेरेंट्स वर कॉलिंग वो इतने इमोशनल और ओवरवेल्ड थे एंड दे वर ऑल सो प्राउड एंड हैप्पी कि यू नो उनके बच्चों का जो कंट्रीब्यूशन है जो मेहनत है उसे अप्रिशिएट किया जा रहा है एक्नॉलेज किया जा रहा है अलॉन्ग विद देयर सैक्रिफाइसेस एंड देयर एफर्ट्स एंड दैट इज सच अ ब्यूटिफुल वे यार और इसके बाद पता है पेप्सी की सेल्स स्काई रॉकेटेड यस क्रेजी वाली बट आई एब्सोल्युटली लव दिस स्टोरी व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस क्योंकि हम यूजुअली भूल जाते हैं मेरी सक्सेस मेरी है करके निकल लेते हैं लेकिन नहीं उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है बहुत लोगों के सेक्रीफाइसेस होते हैं स्पेशली आर पेरेंट्स एंड आर फैमिली राइट सो वो भी वो कंग्रेचुलेशंस और वो अप्रिसिएशन अचीवमेंट डिजर्व करते कह रही हूँ मैं वो अप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं सो या टाइम टाइम पे करते रहना चाहिए ठीक है एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव भेज रही हूँ एकदम ब्रांड न्यू गाना आवर अपन टू से तेरा मेरा रिश्ता पुराना आपको और मुझे डेडिकेट किया मैंने हाँ जी स्टे ट्यून्ड हाँ जी बिंदास

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरज तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा दस मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे.

0: Tanisha.
1: जय से आई हेट यू लाइक आई लव यू जो रिश्ता हमारा संडे से है ये गाना बिल्कुल उसे ही बयां करता है. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम दनीशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि जो नेटफ्लिक्स है वो एक फ्रीजिंग अकाउंट पॉलिसी लेकर आ रहा है. सो अगर आप वीकली कुछ लाइक मे बी अ वीक और मे बी टू वीक्स ऐसा कुछ तो उन्होंने ड्यूरेशन रखा है, इतने टाइम तक अगर आपने नेटफ्लिक्स खोल के नहीं देखा, यू हैव नॉट वॉच्ड एनीथिंग, तो वो आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे. यस, सो फार आप अगर कुछ देख रहे हैं लाइक यू आर वॉचिंग अ शो और समथिंग, और कभी कभी नॉइज़ के लिए लगा लेते हैं ना हम, एंड वी आर डूइंग सम अदर वर्क लाइक आई डू, मेरा फ्रेंड्स बैकग्राउंड में चलता ही रहता है एंड देन आई एम डूइंग माई अदर वर्क, सो आई एम नॉट एक्चुअली सीइंग दैट, और मैंने कुछ भी हलचल करी नहीं है स्क्रीन पे, तो उस पर वो आ जाता है ना आर यू स्टिल वॉचिंग वाला, अदरवाइज वो पॉज कर देता है और समथिंग. यूट्यूब पे भी यही चीज़ होती है. सो अभी वो इनफ नहीं था इनके लिए, नाउ दे वॉन्ट कि आप हर हफ्ते हाजिरी भी लगाओ. नहीं मौका मिला, नहीं टाइम मिला. कई बार ऐसा होता है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर हम कोई चीज़ बिंज वॉच कर रहे होते हैं, तो यार ये तो गलत बात है कि तो चीटिंग हो रही है हमारे साथ है. मतलब एडिक्टेड बनाने के जो नए नए तरीके ये लोग लेकर आ रहे हैं ना, इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी. आप समझ रहे हो.

एब्सोल्युटली लव्ड दिस ट्रैक जब ये आया था, मतलब अभी भी, और फुल ऐसे मैंने इसका कोरियो सीख लिया था यार. And see, all these amazing tracks are lined up for you in this hour. Filal Bhejriyo Bandhu 2.0. Stay tuned on Jio Vindas.

0: Kristen Isha.
1: कविता कृष्ण मूर्ति और कुमार सानू की आवाज में आज मैं ऊपर आसमान नीचे यॉल लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और भाई आसमान से जो अभी आग बरस रही है वो तो नीचे ना ही आए तो बेहतर है ना. बाकी एक बहुत कमाल की चीज़ पता चली मुझे. सो आई एवरी वीकेंड मैं आपको बोल के जाती हूँ कि देखो अपने साथ वक्त बिताना है, अपने अपनों के साथ वक्त बिताना है बहुत ज़रूरी है. फ़ोन में तो हम हमेशा लगे ही रहते हैं, नहीं तो यू नो लैपटॉप स्क्रीन में, नहीं तो टीवी लगा लेंगे, कोई ना कोई स्क्रीन आँखों से चिपकी ही रहती है. पर वीकेंड्स का इस्तेमाल जो आपके पास फ्री टाइम मिल रहा है उसमें अपने आप से कनेक्ट करने के लिए, अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट करने के लिए वक्त बिताएं, उसे यूज़ करें. और 1987 तक आइसलैंड में एक ट्रेडिशन था जो नेशनल टीवी स्टेशन था ना वो थर्सडेज को कुछ नहीं दिखाते थे, कुछ नहीं आता था टीवी पे, सो दैट पीपल आर एनकरेज्ड या तो वो पढ़ ले बैठ के यू नो रीड सम बुक्स या फिर सोशलाइज करें या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें. एंड दैट इज सच अ ब्यूटिफुल जेस्चर. ऑल्सो सैड पार्ट कि हमें फोर्स करना पड़ रहा है, बट इफ कलेक्टिवली सबके साथ हो रहा है ना तो एक पीयर प्रेशर में आके चीज़ें कर लेते हैं हम एंड इवेंचुअली वी स्टार्ट एंजॉइंग इट बिकॉज इट इज़ गुड फॉर अस ओनली. येस. सो इस वीकेंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऐसे ही करना है आपने, अपने साथ वक्त बिताइए, अपने अपनों के साथ वक्त बिताइए और बाकी यू नो लॉन्ड्री ग्रॉसरीज द यूजुअल स्टफ वो तो होता ही रहेगा, उनके साथ मिलके कर लो, जल्दी भी हो जाएगा. अच्छा आइडिया है ना. सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे, स्टे ट्यून्ड जी बिंदास.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: तनिषा
1: मैंने प्यार क्यों किया मूवी से जस्ट चिल दिस इज वन ऑफ दोस ट्रैक्स जिसको मैं गलत गाती थी एंड आई डोंट नो व्हाई आई मीन जस्ट चिल इज हमें पता था कि गाने का टाइटल ही है बट स्टिल समहाउ इट साउंडेड लाइक द वे सोनू निगम ने गाया है ना वो ऐसे चियाओ चियाओ साउंड करता था एंड आई यूज्ड टू सिंग इट लाइक दैट ओनली क्रेजी राइट यू ऑल लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 6.3 एफएम तनिषा के साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड लियाकत जी किरण घरेशिया सैफुल्ला जी मोहम्मद यूसुफ खान साहब को गुड मॉर्निंग और वेरी हैप्पी वाला वीकेंड ये एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ कि बैक टू स्कूल के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो ओपन हैं और काफ़ी थोड़े से वक्त के लिए ओपन है क्योंकि यू नो जो स्लॉट्स हैं वो फिल हो रहे हैं बहुत फास्ट सो जाइए अपने बच्चे को रजिस्टर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो ऑल यू हैव टू डू इज़ गो टू आवर वेबसाइट दैट इज़ olive.qa वहाँ पर आपको बैक टू स्कूल का बैनर नज़र आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा और उस फॉर्म को फिल कर दो बस इतना सा काम करना है फिर हम मिलेंगे 27th ऑफ अगस्त को अबू जिद्रा मॉल में 3 to 7 PM तक ढेर सारी एक्टिविटीज चैलेंजेस गेम्स बहुत सारा फन होने वाला है और स्कूल स्टार्ट होने से पहले बच्चों का जो एंथुजियाज्म और एनर्जी है वो और भी बढ़ जाएगा हाँ जी तो मौके को हाथ से जाने नहीं देने का फटाफट से जाइए और रजिस्टर कर दीजिए olive.qa पर
2: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
2: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
2: Old Airport Road, Doha and Alcor.
3: Call 70222525.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
4: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At

0: से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
1: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
1: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
2: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the

Cispa. In the shop. Sancır Atar gibi vazme shaky shaky only on Radio 106.3 FM Danisha aapke saath bindaas morning chal raha hai yahan par aur 9:49 ho gaya hai that means mere jaane ka waqt yes and it is weekend so jaane se pehle ek baar phir se yaad dila rahi hu apne saath time spend karna hai weekend ko bilkul bhi kaam ka stress lekar barbaad nahi karna hai hum pura hafta intezar karte hain ab kya isme bhi hum kaam ke bare mein soche नहीं जी हम वो जब संडे आएगा ना तब सोचेंगे चिल करने का एकदम डू योर ग्रोसरीज डू योर लॉन्ड्री डू योर क्लीनिंग बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम गोना डू आल्सो इट इज माय बर्थडे टुमारो बट स्टिल प्लान सेम ही रहने वाला है कोई चेंज नहीं है उसमें आप बढ़िया सा वीकेंड अपना स्पेंड करो ठीक है रिलैक्स करो री एनर्जाइज करो खुद को और हो सके तो प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालो अपनी फैमिली के साथ बैठो फ्रेंड्स के साथ बैठो यू नो यही तरीका होता है रिफ्रेश करने का क्योंकि रोज़ जो मोनोटोनस और मंडेन लाइफ को हम जी रहे हैं इस हसल कल्चर के चलते भागते जा रहे हैं पीछे किसी चीज़ के जिसे क्या है वो चीज़ हमें पता भी नहीं है जी हाँ सो प्लीज़ टेक आउट टाइम और थोड़ा रीड करो कुछ अगर मन कर रहा है कुछ बिंज वॉच करने का काफ़ी टाइम से नहीं देखा है तो वो देखो एंड डू समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स यू हैव बीन डूइंग थ्रू आउट द वीक दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से और हमें फॉलो कर लो ये चीज़ आपने पूरा हफ्ता करते रहनी है मतलब एक बार फॉलो कर दिया है तो दोबारा से उसको क्लिक नहीं करना है बट यू कीप एन आई बिकॉज वहाँ कॉन्टेस्ट चल रहे होते और अभी भी चल रहा है जी हाँ नेस्टो हाइपर मार्केट ओपन हो गया है उसका एक वीडियो वहाँ अपलोड हुआ है और उस पर चल रहा है कॉन्टेस्ट तो अगर जीतना चाहते हैं बढ़िया इनाम जाके फॉलो कीजिए radioolive.qa को और वहाँ जाकर हमारे पोस्ट पे कॉमेंट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए इंटरेक्ट कीजिए दैट्स ऑल ज़्यादा नहीं मांगती हाँ बाकी हैव एन अमेजिंग डे एंड अ फैबुलस वीकेंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव सी यू बिंदास मेरी जान

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट.

0: जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला वाली फीलिंग ही आती है जब भी थर्सडे जो है वो हमारे दरवाजों पे जो है दस्तक दे देता है, क्योंकि ना ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने टाइम से इंतजार कर रहे थे हम एक वीकेंड का, लेकिन फाइनली जिसका इंतजार था देखो देखो वो आ गया, देखो देखो वो आ गया, मैं भी आ गई उस साथ में। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, जो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखो एटलीस्ट मैं तो कर रही हूँ, एंड इसके लिए जो है मुझसे जो हो पाएगा जो बन पाएगा वो मैं करूंगी, लेकिन आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए बस बदले में आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस जो है वो मांग रही हूँ मैं। 3311063 इज द नंबर, 3311063, इस पर जल्दी से अपना फोन उठाओ और मुझे गुड मॉर्निंग हाय हेलो जो मन चाहे वो मैसेज कर दो, ताकि मेरा वीकेंड भी और ज्यादा स्पेशल बन जाए। सो आज बहुत सारी अमेजिंग चीजों पे हम बात करने वाले हैं, आपको मूवी रिकमेंड करूंगी मैं कि कौन सी मूवी जो है वो आप देख सकते हो, कौन सी सीरीज जो है वो आप बिंज वॉच कर सकते हो वीकेंड पर, एंड बर्थडे पे बात करेंगे बिकॉज अगस्त में बहुत सारे बर्थडे आते हैं, एंड गेस व्हाट कल किसका बर्थडे है, एंड उसके बाद कुछ हेल्थ की चीजों पर हम बात करेंगे, आपके स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है उस पर बात करेंगे, एंड कुछ लोकल अपडेट्स पर भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो नीडफुल है वो आपको करना पड़ेगा, आपको 3311063 पर जो है मैसेज करना पड़ेगा, जैसे हमारे कुछ बहुत ही प्यारे लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया है। सो थोड़ी सी देर में इनके मैसेजेस पढ़ेंगे, साथ में आपके मैसेजेस भी पढ़ेंगे, तो जल्दी से फोन उठाओ, मैसेज कर दो मुझे यानी आपकी कशिश को। फिलहाल आज का वाइब जो है वो सर्च करते हैं बेबी डू डाई डू का एक अमेजिंग वाला डांस वाला गाना जो है वो आपको सुनाती हूँ मैं, एंड अपने शो की शुरुआत करते हैं। सो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए एंड ये गाना सोनू निगम की आवाज में अलका याग्निक जी के साथ एंजॉय कीजिए।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो, हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हमशा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: आपको वक्त बताने का वक्त हो चला। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:12, दैट इज 10:12। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
4: हाय, दिस इज कैलाश खेर एंड यू आर लिसनिंग टू कतार्स फर्स्ट हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट.

0: जुबिन नौटियाल की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. अब देखिए 20th August आज की जो है तारीख है, थर्सडे का दिन है, और इससे बेहतर और क्या हो सकता है बताओ. देखो यार कि कल जो है वो छुट्टी हो, आपका बर्थडे हो एंड बस और आप जैसे लोग हूँ विश करने के लिए. सो मेरे बताते ही कि कल मेरा बर्थडे है, बहुत सारे लोगों ने मुझे विश करना शुरू कर दिया. एंड सबसे बेस्ट बात यह है कि सिर्फ मेरा बर्थडे नहीं है, तनीषा का बर्थडे है एंड कुछ दिनों बाद सिमरन का बर्थडे भी है. सो हम मतलब उस वाली अभी सिचुएशन में है जहाँ पर हम एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे नहीं कहेंगे, हम एक दूसरे को सेम टू यू कहेंगे. यानी जो भी पहले कहते हैप्पी बर्थडे उसका आंसर होगा सेम टू यू. वैसे आज जो है हवाएं बहुत अच्छी चल रही थी बाहर. मैं जैसे ही अपने यू नो घर से बाहर पैर रखा, वैसे ही बाल उड़ते हुए बिल्कुल जैसे बॉलीवुड की मूवी में होता है ना, वैसे हुआ मेरे साथ. और मैंने ईयरफोन्स लगा रखे थे जिसमें बहुत ही अच्छा शाहरुख खान का गाना ऑलरेडी चल रहा था, तो मतलब मेरा तो फुल वाइब सेट हो गई थी आज सुबह की. वैसे आज टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, आज का लोएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 29 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 22% रहने वाली है, जिस वजह से थोड़ी सी गर्माहट का एहसास ज़्यादा होगा. लेकिन हवाएं जो है वो 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली है, यानी तेज तो देखो होने वाली है. आज अभी का अगर मैं करंट टेम्परेचर की बात करूं तो 42 डिग्री सेल्सियस अभी का टेम्परेचर हो रहा है दोहा में. एंड यूवी इंडेक्स की बात करें तो 8 रहने वाला है, यानी वेरी हाई. सो सनस्क्रीन लगाना देखो बिल्कुल मत भूलना. अब इस हीट को बीट करने का एक ही तरीका है कि कूल लोगों के साथ कूल चीज़ें आप करें. सो आपकी ये जो कूल दोस्त है कशिश, ये जो है आपको कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनाने वाली है. सो वॉल्यूम बढ़ाओ, इन्जॉय करो एंड थोड़ी सी देर में जो है एक अमेजिंग वाली बात आपको मैं बताने वाली हूँ, तो बिल्कुल यहीं रहना, कहीं जाना मत. फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना इन्जॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास.
1: Song. Radio Olive Bird. Aane wala gaana. Cool song of the hour. Song of the
2: hour. Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai. Cool song.

मूवी का जो एल्बम है वो, मतलब इस मूवी में हर जॉनर के गाने आपको मिलेंगे, चाहे आपको रोमांटिक चाहिए हो, फन चाहिए हो, चाहे बस एक्सप्रेसिव चाहिए हो, गुमशुदा, सुनो ना सुन लो ना, और ऊपर से ये एक ट्रैवल एसेंशियल गाना है। मतलब आप गाड़ी में बैठ रहे हो तो दो चार गाने होते हैं ना कि जो आप चलाते ही चलाते हो लॉन्ग ड्राइव से पहले, ये वो गाना है यार। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी के एल्बम को एक अलग से अवार्ड जो है वो दे देना चाहिए। वेलकम जी 106.3 रेडियो एलएफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, कई बार ऐसा होता है ना कि हम चीजें इन्वेंट कर देते हैं, मतलब हम नहीं करते हैं लेकिन जो इन्वेंट करता है वो किसी और यू नो पर्पस के लिए करता है, लेकिन उसको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे अगर मैं बबल रैप्स की बात करूँ, जिसपे हमारे अक्सर जो हमारे पार्सल हैं या जो कांच की चीज़ें हैं वो रैप होकर हम तक पहुंचती हैं, एंड कई लोग जो है एंजाइटी के लिए उन बबल्स को ऐसे पॉप भी करते हैं। सो बबल रैप्स को हमने हमेशा से यही सोचा है कि यार ये तो मतलब चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है, पैकेजिंग मटेरियल है बेसिकली। लेकिन बबल रैप्स को इन्वेंट किया गया था एज अ वॉलपेपर, लेकिन फिर वॉलपेपर की तरह जब बबल रैप्स को यूज़ किया गया तो फिर लोगों को लगा कि यार ये तो काफ़ी चीप लग रहे हैं एंड बहुत अनयूजुअल सा टेक्सचर लग रहा है, हमें इसे अपनी दीवारों पर नहीं लगाना। एंड तब बबल रैप्स को यूज़ किया गया ऐसे पैकेजिंग के लिए, ताकि चीज़ों को टूटने से बचाया जा सके एंड उन्हें सेफ रखा जा सके। लेकिन कभी भी बबल रैप के जो इन्वेंट करने वाले लोग थे ना, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह जिसने भी चैट जीपीटी बनाया है, उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि हमारी इस इन्वेंशन का, हमारी इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का इस्तेमाल लोग इस तरीके से करेंगे। अगर उन्हें पहले पता होता कि लोग ऐसे चैट जीपीटी को यूज़ करने वाले, वो बोलते कि नहीं बनाना हमें चैट जीपीटी, नहीं बनाना हमें AI, हम ऐसे ही ठीक हैं। अब रिसेंटली जो है, मतलब रिसेंटली नहीं, अभी एक आध हफ्ता हो गया है ये खबर मुझे पड़े हुए कि एक इंसान ने ऐसे, जब बहुत सारे सैंडल्स, शूज़ और चप्पल जो है ना वो ज़मीन पर पड़े हुए थे एंड सबके मिक्स हो गए थे, जब भी आप किसी के घर जाते हो, कोई फंक्शन होता है तो बाहर दरवाजे के बाहर जब बहुत सारे शूज़ हो जाते हैं तब आपको अपनी जो शू है, अपना सैंडल जो है, ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आती है। सो एक इंसान ने इस चैट जीपीटी से फ़ोटो खींच के उसने बोला कि ये मेरे पास मेरा एक पैर का शू है लेकिन मुझे दूसरा नहीं मिल रहा है, इतने सारे जो है चप्पल्स में से, शूज़ में से मुझे प्लीज़ मेरा जो दूसरा पेयर है शू का वो ढूंढ के बताओ। वाओ, मतलब चैट जीपीटी ने इससे ज़्यादा टफ काम कभी नहीं किया होगा। मतलब लोग जो है उससे अपने ऑफिस का काम करवा रहे हैं, कोडिंग करवा रहे हैं, ऐप्स बनवा रहे हैं, एंड हमारे जो कुछ लोग हैं वो इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह, मतलब कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि खड़े होकर सल्यूट देनी चाहिए, एक अलग अवार्ड चलते चलते के एल्बम के साथ इन लोगों को भी देना चाहिए। फिलहाल एक और अमेजिंग गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो वॉल्यूम बढ़ाओ, इसे इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ। आकर ज़रा आपको मदद करूंगी मैं इस बात पे कि यार आपका स्ट्रेस कैसे कम किया जा सकता है। मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफिस कराफा।

से सीखा लेकिन बातें ऐसे जैसे गारा में कव्वाली फटेगा आड़ा तो नीचे गड़ेगा मेरे जैसा है कोई नहीं मोवाली देंगे ये सलामी चलने को जा

0: मुनव्वर फारूकी को जो है कॉमेडी थोड़ी सी उसको रोक के गाने जो है वो बनाने चाहिए, क्योंकि जब भी वो गाने बनाते हैं लेगेसी बन जाती है। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश। एंड ओ माय गॉड, ये क्या क्या क्या रिपीट बोल रही हूँ मैं चीजें। वैसे लाइफ मस्ट शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपके लिए जो है बहुत ही अमेजिंग कंटेंट मैं लेकर आती हूँ। एंड अब तो ये भी हमारी लेगेसी बन गई है कि यार आपको स्ट्रेस कम करने के मैं तरीके बताती हूँ। सो आज जो एक स्पेशल तरीका मैं लेकर आई हूँ वो ये है कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो जब आपको थोड़ी सी एनजाइटी सी हो रही है या आपको अनईजी सा लग रहा है। सो सबसे पहले तो अगर आप वार्म मिल्क और हनी जो है वो कंज्यूम करते हो तो आपको ना एक अंदर से कम्फर्ट महसूस होगा। साथ में अगर आप चाय के शौकीन है तो चाय ना पीते हुए कैमोमाइल टी जो है वो आप पी सकते हैं। जेंजीज का फेवरेट माचा जो है वो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर रात को आपको नींद नहीं आ पा रही है क्योंकि आपको स्ट्रेस है तो आप एक बार हल्दी वाला दूध जो है वो ट्राई कीजिए। ये तो खैर रिसर्चर्स ने तो खैर प्रिस्क्राइब किया ही है, लेकिन साथ में जो हमारी दादी नानी के नुस्खे हैं वो भी यही कहते हैं। सो कुछ ज़्यादा नया नहीं है, बाकी हमारी ट्रेडिशंस को ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्ट्रेस से दूर जाने के बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। फिलहाल टॉक्सिक मूवी का तबाही गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इंजॉय कीजिए। थोड़ी सी देर में जो है आपको सारी खबरें जो है इंपॉर्टेंट आपके जानने वाली वो भी मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून रहो और कहते रहो आपकी कशिश के साथ। जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर। फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:11, दैट इज 11:11। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
2: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी। नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट। बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड। दानातल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर। सुक वाकिफ अलखोर।
3: I Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: ऑफ कोर्स यार, हर इंसान को कोई ना कोई चाहिए, लेकिन मेरे पास तो आप सब ऑलरेडी हैं। इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस एंड एडवांस बर्थडे विशेस के साथ कोई खुश कैसे ना हो। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल तो देखो, आप सबने मेरी लाइफ को मस्त बनाने का ऐसा लग रहा है बीड़ा सा उठा लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ले लिया, क्योंकि एक तो देखो वीकेंड, ऊपर से मेरा बर्थडे, ऊपर से आप सबकी विशेज, नाइस। तो चलिए, जो हमारी बात है, जो मैं करने वाली हूँ आपसे, वो तो हम करेंगे, लेकिन साथ में सबसे पहले आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं। तो चिराग जी ने जो है मुझे, चिराग गावा जी ने एक वीडियो भेजा है जिसमें मेरी ही आवाज आ रही है, और उन्होंने लिखा है हैप्पी वीकेंड कशिश मैम, थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड टू यू टू। उसके बाद अस्मा जी ने गुड मॉर्निंग कशिश कहा है, गुड मॉर्निंग। रवि जी ने भी जो है वो गुड वाली मॉर्निंग कशिश जी कहा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। एंड उसके बाद लियाकत जी ने जस्ट अभी अभी मुझे मैसेज किया है, गुड मॉर्निंग जी एंड हैप्पी, हैप्पी लिखा है, शायद ये बर्थडे लिखने वाले थे बट जल्दी जल्दी में इन्होंने नहीं लिखा है, ये हैप्पी वीकेंड लिखने वाले थे, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। एंड बात कर लेते हम सिजन जी की, सिजन जी ने भी लिखा है कि रेडियो ऑलिव दिलवाले मूवी का एक ट्रैक जो है वो आप सुनना चाहते हैं, शाहरुख खान के फैन है ये, बिल्कुल जी। देखो, शाहरुख खान की फैन तो मैं भी हूँ, मेरे शो में शाहरुख खान का एक भी गाना नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी आते से ही चार गाने जो है मैं सुना चुकी हूँ शाहरुख खान के, तो इस पर हम बात करेंगे। एंड अब बात कर लेते हैं मोहम्मद यूसुफ खान जी के मैसेज की, जिन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग कहा है, हैप्पी वीकेंड कहा है, एंड उन्होंने कहा है कि कशिश शायद आज तनीषा का बर्थडे, नहीं नहीं नहीं जी, तनीषा और मेरा बर्थडे सेम दिन पे आता है, कोइंसिडेंटली हम सेम बर्थडे वाले हैं, सो अब कल हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। एंड उन्होंने मुझे लिखा है कि आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे एंड अल्लाह आपको खुश रखे, कामयाबी और कामयाबी दे, आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूसुफ खान जी। एंड देखिए यार, अब बर्थडे की बात हमने शुरू करी ही है, तो क्यों ना आज का डिस्कशन का टॉपिक भी बर्थडे वाला कर देते हैं। सो मी बीइंग अ जेंजी, एक जेंजी रिपोर्ट जो है वो मैंने देखी थी, जहां पर आजकल जेंजीज जो है वो केक के कल्चर को, यानी केक कटिंग के कल्चर को जो है कम कर रहे हैं, एंड जो भी उनकी फेवरेट चीज़ होती है उस पर एक कैंडल जो है वो लगा कर, फूक कर, और फिर आगे बढ़ रहे हैं। सो कॉफ़ी पर जो है आजकल ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं जेंजीज, यानी अपने बर्थडे पर जो है केक काटने के बजाय वो कॉफ़ी पर कैंडल लगा रहे हैं, एंड उसके बाद हैप्पी बर्थडे हो जाता है। सो ये जो कल्चर है, ये कहा जा रहा है कि अभी ही जेंजीज ने शुरू किया, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब जब मैं इंडिया में भी थी तो मैंने देखा है कि चलो हम सब के बर्थडे पे, यानी बच्चों के बर्थडे पे तो केक आ जाते थे, लेकिन अगर कोई एल्डरली इंसान है सो उनके बर्थडे पर जो है अक्सर मम्मी हलवा बनाती थी, या फिर उनकी फेवरेट चीज़ें, जब जलेबी आ गई, रबड़ी आ गई, या किसी को पिज़्ज़ा पसंद है तो हमने उसके पिज़्ज़ा पे जो है वो कैंडल लगा दी। सो जिस इंसान को जो जो पसंद होता है उसके हिसाब से हमने कभी केक को जो है एलिमिनेट भी किया है। अब आपको क्या लगता है कि क्या केक बिना बर्थडे जो है वो मना लेना चाहिए, या क्या आपको ऐसा लगता है कि केक की जगह कोई और चीज़ जो है वो यूज़ की जा सकती है? बस आज इसी पर बात कर रहे हैं हम। मतलब वीकेंड है यार, थोड़ा लाइट टॉपिक रखना चाहिए। ओपिनियंस आप अपने दे सकते हैं मुझे 3311063 पर। अगर फिलहाल कल आपकी कशिश का बर्थडे है, पोस्टर लगवा दो यार, नहीं नहीं मतलब बर्थडे के पोस्टर में लगवाओ, गाना आ रहा है पोस्टर लगवा दो। सो ये गाना एंजॉय करो लुका छुपी मूवी से। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफ

मशीन बनाओ और मुझे इस कजरारे कजरारे वाले टाइम में वापस लेकर जाओ, क्योंकि वो वक्त ही बढ़िया चल रहा था यार जब मैं लहंगा पहन के जो है अपनी मामा की शादी में, चाचा की शादी में कजरारे कजरारे पे डांस कर रही होती थी। जब से वो वक्त गया है तब से जो है प्रेशर बढ़ गया है यार मुझ पे, कभी पढ़ाई का, बोर्ड्स का, कॉलेज एडमिशन का, फिर कॉलेज के रिजल्ट का, फिर जॉब का, और फिर अब जस्ट ऐसे ही लाइफ का। मैं किसी भी चीज़ का टेंशन ले लेती हूँ, लेकिन बस एक ही चीज़ है जो मुझे स्ट्रेस से रोक सकती है, वो है मेरा बर्थडे। सो आज हम जेंजीज के बर्थडे सेलिब्रेशन पर जो है वो बातचीत कर रहे थे, एंड मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने वेकअप सिड मूवी देखी है? एंड उसमें जब आयशा का बर्थडे होता है तो सिड जो है लास्ट के 4 मिनट में, मतलब जब उसका बर्थडे जाने वाला होता है, तब जो है एक ब्रेड जैम से एक केक बनाता है एंड उस पर कैंडल लगाता है, एंड फिर वो लोग वो ब्रेड जैम खाकर अपना बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। एंड यही आजकल का कल्चर बन गया है, मतलब जेंजीज जो है वो केक को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर रहे हैं, केक कटिंग को, एंड अपनी फेवरेट चीज़ों पे कैंडल लगाकर या खाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पिज्ज़ा पे कर रहे हैं, मेरे ही दोस्तों के बर्थडे पर हमने जो है केक को एलिमिनेट करके, बिकॉज हम सब शुगर कट पे थे, हम सब शुगर नहीं खा रहे थे, सो हम सब ने दूसरा अनहेल्दी ऑप्शन यानी पिज्ज़ा जो है वो ट्राई किया, लेकिन पिज्ज़ा भी हेल्दी वाला आता है, तो हमने जो है वो वीट वाला जो क्रस्ट होता है वो लिया था, एंड हेल्दी पिज्जा बेसिकली, उस पर हमने कैंडल लगाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। एंड जब मेरे दादाजी का बर्थडे होता था तो वो बोलते थे कि यार केक वेक में या आइसिंग वाला केक नहीं, तो उनके लिए हम एक ब्रेड वाला जो अलग केक होता है वो ले आते थे। एंड कई लोगों के बर्थडे पे मैंने हलवा बनते हुए देखा है, एंड रिसेंटली ही मुझे पता चला है एक और कॉन्सेप्ट के बारे में, बिरयानी केक के बारे में, एंड अभी हमारे लिसनर ने हमें बताया कि यार उनका बस चले तो वो तो बिरयानी पर जो है वो कैंडल लगाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दैट्स रियली नाइस। खैर मोहम्मद यूसुफ खान जी ने भी मुझे ये मैसेज किया, उन्होंने कहा है कि कशिश मैं जो है ये समझता हूँ कि बर्थडे केक्स जो है वो इतने ज़रूरी नहीं होते हैं, एंड ये ट्रेंड जो है वो ख़त्म ही हो जाना चाहिए, बर्थडे जो है वो खुशी का मौका होता है, एंड इसे मीठी चीज़ से जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो कुछ भी चल सकता है। अब देखो यार, मुझ जैसा चाय लवर जो है वो तो, आप एक चाय के कप पे भी अगर आप बोले कि यार उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ, सो उसमें कोई भी ऐसे सरदर्द वाली बात नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, अभी हमारी बातचीत जारी है, थोड़ी सी देर में आपको जो है मूवी रिकमेंड करने वाली हूँ एक मैं, कि वीकेंड पर क्या करके आप अपना जो वीकेंड है उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो फिलहाल वॉल्यूम बढ़ाइए, अली जफर की आवाज़ में एक ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
2: तरीका अब बदलने वाला है।
3: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
2: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
4: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतर। 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
5: Oh no! फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
6: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
7: एंड
6: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
7: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
6: कॉल 7022525।
7: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
8: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
7: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

ऐसे ही गाने जो है वो रीजन है कि लोगों को जो है शादी करने का मन हो जाता है कि यार लहंगा पहन के हम भी इस गाने पे रील बनाएंगे। वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी, वादा मैंने आपसे किया था कि मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करूंगी जो आप वीकेंड पे देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। पहले एक फैक्ट बता देती हूँ, ये जो गाना अभी आपने सुना ना दुल्हन हम यहाँ से ले जाएंगे, सो ये जो गाना है ये पहले DDLJ मूवी यानी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का टाइटल ट्रैक होने वाला था, लेकिन फिर ये गाना किसी वजह से शूट नहीं हो पाया, तो इसे दूसरी मूवी यानी सलमान खान एंड सलमान खान की जो मूवी है उसमें ये ऐड कर दिया गया। तो ये गाना कुछ ऐसा होता कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सो हमें एक शाहरुख खान का आइकॉनिक गाना जो है वो नहीं मिल पाया, लेकिन सलमान खान ने इसे अपने वे में आइकॉनिक बना दिया। अगर आप एक आयरनी देखिए कि जितने भी मेजर हिट जो शादी के गाने हैं वो ज़्यादातर सलमान खान के हैं, तो अब सलमान खान को खुद मौका ही नहीं मिला अपनी शादी में जो है डांस करने का, पर उन्होंने बॉलीवुड में सारे अरमान पूरे किए हैं तो कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर जुग जुग जियो मूवी से, सो इसे इंजॉय कीजिए, वॉल्यूम बढ़ाकर। थोड़ी सी देर में आती हूँ मैं और मूवी पक्का से बताऊंगी कि क्या देखना चाहिए आपको इस वीकेंड पर। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

मूवी का नाम बदलापुर, गाने का नाम जुदाई। अब देखिए बदलापुर वरुण धवन की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस जो है वो कही जा सकती है एंड वन ऑफ द फर्स्ट भी कही जा सकती है। मतलब कुछ शुरुआती अच्छी यू नो परफॉर्मेंसेस जो वरुण धवन ने दिए हैं, तब हमें रियलाइज हुआ कि ओ वरुण धवन भी जो है अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, वो थी बदलापुर में। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑर्डर पर, मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, एज मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एज प्रॉमिस्ड, मैं जो है आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी मूवी है जो आप वीकेंड पर देख सकते हैं। अब देखो मैं किसी नई मूवी के बारे में नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं बताने वाली हूँ आपको 2012 की एक मूवी के बारे में, जिसमें शाहिद कपूर एंड प्रियंका चोपड़ा अपने पीक पर है। मतलब अपनी करियर के सबसे पीक पे उन्होंने हमें ये एक बहुत ही अमेजिंग मूवी दी थी, जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। यस, इस मूवी के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता, लेकिन एक अमेजिंग राइटिंग का एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो वो ये मूवी है। मूवी का नाम है तेरी मेरी कहानी एंड ये मूवी आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बताती है कि अलग अलग एरा में एक लव स्टोरी किस तरीके से चलती है। ये वाली सेम चीज हमने जो है लव आजकल में भी देखी है, लेकिन उसमें जो है साइमल्टेनियसली दो जगह स्टोरी चल रही होती है, पर यहाँ पर तीन अलग अलग एराज में, यानी 1910 में एंड उसके बाद 1960 में एंड 2012 में, सेम लव स्टोरी अलग अलग तरीके से, यानी सेम कैरेक्टर्स जब अलग अलग एरा में मिलते हैं तो क्या होता है वो बताया गया है। सो अब अगर इसमें एक जेंजी स्टोरी भी ऐड करी जा सके तो मज़ा ही आ जाएगा, तो इसका मुझे ऐसे लगता है कि पार्ट टू बनना चाहिए। फिलहाल तेरी मेरी कहानी आज का रिकमेंडेशन है, आप जाकर ज़रूर से देखिएगा। शाहिद कपूर बहुत चार्मिंग लग रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा बहुत खूबसूरत लग रही हैं, देखना ज़रूर एंड फिर मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। बाकी 3311063 इज द नंबर, इस पर आकर आप भी अपनी फेवरेट मूवीज जो है मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं बाकी लोगों को भी यू नो रिकमेंड कर सकूं। फिलहाल टॉक्सिक मूवी का एक गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, वॉल्यूम बढ़ाओ, एंजॉय करो, उसके बाद जरा फैशन की बातचीत लेकर वापस आऊंगी। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Time check. Brought to you by Dhanat Al Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:13. दैट इज 12:13. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण.
5: दीपिका पादुकोण,
4: रेडियो ओलिव 106.3.
6: हम नंबर 1 रेडियो ओलिव.
7: ओलिव सुनो, रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: रिमझिम बरसते हुए गिरते हुए सावन को देखने की आंखों की प्यास तो पूरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए ऐसे गाने प्ले करके दिल को ठंडक पहुंचा रहे हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूं आपकी कसर्स एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं लाइफ मस्त है, जहां आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूं। अब देखो यार, फैशन की बातचीत जो है वो करना जरूरी सा लगने लग गया है अब मुझे। मतलब मेरी बॉडी में ऐसा लगता है कि कोई तो मिनरल है जो कम हो गया है अगर मैं फैशन की बात ना करूं। सो फैशन ट्रेंड में आज हम बात करने वाले हैं नेल्स की। यस, सो आप आई नो बहुत सारे पैसे अभी तक स्पेंड कर चुके होंगे अपने एक्लेरिक क्यों बोला मैंने अपने यू नो नेल पेंट्स पे, अपने जेल नेल पॉलिश पर, एक्सटेंशंस पर, लेकिन अब जो है एक फैशनेबल ऑप्शन आ गया है। यस, नेल रिंग जो है एक नया कॉन्सेप्ट है, नया नहीं है मतलब थोड़ा पुराना है, लेकिन इस वक्त काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, जिसमें आप रिंग्स जो है जो आपके ठीक आपके नेल्स के ऊपर जो है वो आप पहन सकते हैं एंड वो एक नेल एक्सटेंशन की तरह दिखाई देता है, बट इट्स अमेजिंग क्योंकि राइनस्टोन डिटेलिंग के साथ, गोल्ड मोटिव्स के साथ, सिल्वर गोल्ड जैसा आपको चाहिए वैसा आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप उसे जब चाहे तब हटा सकते हो। आपको जो है आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि यार अभी अभी मुझे नहीं चाहिए, इस वक्त मुझे 5 मिनट बाद नेल्स चाहिए, सो आप उसे हटा सकते हो। आपको अपनी ड्रेस बदलनी हो आप हटा सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं। एंड आप जैसे एक्सटेंशन कराने के बाद जो है 10-15 दिन तक एक महीने तक स्टक हो जाते थे ना कि अब इन्हीं के साथ रहना है, और नेल पेंट से जो है वो रॉयल फिनिश भी नहीं आ रही होती थी, तो बस अब ये बेस्ट चीज़ है। आप चाहो तो दिन में 5 लोग बदल सकते हो अपने नेल्स के सिर्फ नेल रिंग के साथ। सो नेल रिंग इज़ अ न्यू ट्रेंड, आप ट्राई कर सकते हैं। एंड वो लोग जिन्हें परमानेंटली एक पेंटेड नेल्स नहीं चाहिए या फिर उन्हें पूरे टाइम एक्सटेंशंस नहीं चाहिए, वो लोग जो है भी ये ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल इस कूल एडवाइस के बाद मुझे ऐसा लगता है कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर तो बनता है। सो ये अमेजिंग वाला गाना एंजॉय करके आओ, बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास। कूल
1: सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
3: ओ प्रिया, जब जब तू मेरे सामने आती है मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। तू मेरा प्यार, मेरी पूजा, मेरी जिंदगी है। आ देख, देख तू मेरा पागलपन कि मैं हर चेहरे में तेरा चेहरा तलाश करता हूं। ये मुझे क्या हो गया है, क्या कहूं, बस तुझे छूने को दिल करे, तुझे पाने को दिल करे।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस

0: है ये जिसने दोबारा मुड़ के आपकी कशिश को नहीं देखा? Who is he? Welcome to 106.3 Radio Oliver. मैं हूँ आपकी कशिश and show आपके लिए लेकर आ गई हूँ life मस्त है जो आपकी life को थोड़ा extra मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. And देखिए अगर हम spiritual animal की बात करें तो हम हमेशा animal की बात नहीं करते, हम characters की भी बात करते हैं as per Instagram. So Poo जो है वो मेरा spiritual animal होने वाली है because इसी की तरह unhinged हूँ मैं बिल्कुल. और इस unhinged तरीके से ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे बच्चों की summer vacation जो है वो खत्म होने वाली होती है ना, मतलब पेरेंट्स जो है वो थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं कि यार अब इनकी समर वेकेशन जो है वो ख़त्म हो रही है, अब होमवर्क पे ध्यान देना पड़ेगा, अब जो है प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे. लेकिन देखिए समर वेकेशन ख़त्म होने से पहले फन जो है वो अभी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है बैक टू स्कूल बैश अबू सुद्रा मॉल में इस 27th of August को दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक. अब आप पूछेंगे कशिश ये बैक टू स्कूल में होगा क्या? अब मैं बताती हूँ आपको, एपिक गेम्स होने वाले, क्रेजी चैलेंजेस होने वाले और नॉन स्टॉप धमाल होने वाला है. सो जो है मतलब किताबें खोलने से पहले एक बार खुल के खेलने का मौका जो है वो तो हमें बच्चों को देना चाहिए ना. बस इसीलिए बैक टू स्कूल में आप अपने बच्चों को ला सकते हैं. इनरोल करना है सबसे पहले तो, एंट्री के लिए बस आपको olive.qa पर जाना है एंड वहां जाकर बैक टू स्कूल नाम का एक फॉर्म आपको दिख जाएगा, उसे फिल इन करना है. स्पॉट्स लिमिटेड रहने वाले हैं तो जल्दी जल्दी आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं. बाकी और अगर चाहिए तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट पे यानी olive.qa पर मिल जाएगी आसानी से. तो जल्दी से जाइए, अपने बच्चों को जो है एनरोल कर दीजिए ताकि वो भी कह सके कि यस गोइंग बैक टू स्कूल इज फन. मैं हूं आपकी कशिश एंड
1: वेन्यू पार्टनर अबू सुद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सुद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
2: कॉल 7022525.
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

खान जी जो लुक सर्व करेंगे, जो मूवी में जो स्टोरी दिखाएंगे, हम उस पर आंख बंद करके यकीन करेंगे। लेकिन मोहब्बतें मूवी पर बात करने के लिए मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए प्लीज। वेलकम टू 106.3 रेडियो आरएफएल, मैं हूं आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूं लाइफ मस्त है, जहां आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही थी। अब देखिए यार, वैसे तो मेरे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाते जाते अब मोहब्बतें मूवी का ये गाना जो है वो हमने सुन लिया है, तो मैं कुछ बातें मोहब्बतें मूवी पे करनी चाहती हूं। तो अभी मैं रीविजिट की मोहब्बतें, यानी री वॉच की मैंने मोहब्बतें मूवी, एंड उसमें मुझे कुछ बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स जो है वो नज़र आई हैं। इस मूवी में कोई टाइमलाइन नहीं है, मतलब कुछ भी चल रहा है। सबसे पहले तो मुझे शाहरुख खान की उम्र जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आई कि कैसे ये दिखाया गया है, एंड उसके बाद मुझे जो है इस मूवी की टाइमलाइन नहीं समझ आई कि क्या ये पूरी मूवी एक हफ्ते में हुई है, या फिर एक हफ्ते में जो है, या जितना भी टाइम इस मूवी की टाइमलाइन दिखाई गई है उसमें ये फेस्टिवल्स जो आ रहे हैं, ये ऐसा है कि डायरेक्टर को गाना मिल गया तो उन्होंने बोला चलो गाना शूट कर लेते हैं, एंड उसके बाद उन्होंने बोला अरे कोई ओकेशन डालना पड़ेगा तो ये डाल दो। कोई टाइमलाइन का बिल्कुल जो है ध्यान नहीं दिया गया है। कभी भी गर्मी आ रही है, कभी भी सर्दी आ रही है, कभी भी बारिश हो जा रही है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग उस वक्त पे इतनी थी भी नहीं जितनी इस मूवी की वजह से दिखा दी गई है। मैं मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती शाहरुख खान जी को, रोमांटिक मूवी को, एंड यू नो मोहब्बत मूवी को। मैं खुद शाहरुख खान की इतनी बड़ी फैन हूं ना कि मैंने कभी डिटेल्स देखी नहीं, लेकिन अगर आपको कभी अपने फेवरेट आर्टिस्ट की मूवी जो है रीवॉच करनी है, या आपको जो है कभी कोई गलती नहीं दिखी, तो एक बार नॉन फैन के साथ जो है वो देखिए। मतलब जैसे शाहरुख खान की मूवी अगर आप देख रहे हैं तो किसी नॉन शाहरुख खान फैन के साथ बैठकर वो मूवी देखिए, तब आपको समझ आएगा कि यार ये लोग ना बहुत लॉजिक के साथ मूवीज देखते हैं, ना आपने कभी ये लॉजिक शाहरुख खान की वजह से उस मूवी में देखा ही नहीं। सो मोहब्बतें मूवी इन टोटल बहुत अच्छी है, एल्बम बहुत अच्छा है, गाने बहुत अच्छे हैं, ऐश्वर्या राय क्या खूबसूरत लगी है, तीनों एक्टर्स जो जूनियर एक्टर्स हैं, सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, वो तीनों ही बहुत चार्मिंग लगे हैं, एंड अमिताभ बच्चन, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, मतलब ये तीनों वर्ड्स बाकी जो एक्ट्रेसेस हैं मूवी में उससे ज़्यादा इनको अटेंशन दी गई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी मूवी है, वेरी नाइस। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें अटपटी लगी, आप एक बार वापस देखिए ये मूवी, आपको कुछ अटपटा लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, कल बर्थडे की तैयारियाँ भी तो करनी है। आप अगर मुझे बर्थडे विश करना चाहें तो 3311063 इज द नंबर, वहाँ विश कर सकते हैं। बाकी कल हमारी मुलाकात टेक टॉक वाले शो पर होने वाली है शाम को 4 बजे, तो बिल्कुल अपने रेडियो सेट से चिपक के एकदम बैठ जाइएगा। फिलहाल आदित्य ए की आवाज़ में चांद वालिया गाना मैं खुद को रेडी करती हूँ, और आपको टाटा बाय बाय कर यहाँ से जाती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, मुझे याद करते रहना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव यू वीकेंड, जियो बिंदास।

0: Hi, Radio Olive. Radio Olive. 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
1: I'm in number one. Radio Olive.
2: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network. Sirf number one log. Sunte hain number one radio station. Radio Olive. 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
3: Oh no! Fir se school! अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
3: एंड
4: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
3: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
4: कॉल 7022525.
3: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
5: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
3: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हेलो, मैं हूँ नीना गुप्ता।
4: नीना गुप्ता, आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
5: ओलिव सुनो।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी टू शॉप।
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
4: फिर से स्कूल।
3: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
5: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
3: एंड
5: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
3: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
5: कॉल 7022525।
3: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
6: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।
3: रिफ्रेशमेंट पार्टनर अल वाजबा डेयरी एंड अल शमाल प्योर ड्रिंकिंग वाटर, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गल्फ सेंटर होल्डिंग।

आज समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है जीते
0: और हो रहना किसी के

0: मैं हूँ सारिका।
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ
2: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर स्मार्ट कैजुअल स्टाइलिश डेनिम्स स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप
2: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर offer
3: mornings and night

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और बांध रखी है तो कस के बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक उड़ान भरने वाले हैं, जहाँ पे गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, और कहते हैं जियो बिंदास।

0: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
0: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
2: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3. Radio Olive, Jio Bindas.

0: आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम बात करना चाहेंगे पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस के बारे में। जब चूज करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं तो चूज करना एक्चुअली डिफिकल्ट हो जाता है। जब ऑप्शंस कम होते हैं तो हम इजीली अपना डिसीजन बना सकते हैं, मगर ऑप्शंस जब ज्यादा होते हैं तो डिसीजन बनाना मुश्किल हो जाता है, डिसीजन फटीग की ओर हम चले जाते हैं। इसी को हम पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, सुबह सुबह अगर आपने ऑफिस के लिए रेडी होना है और आपने रात को कपड़े नहीं निकाल के रखे, आप अपना कबर्ड खोल के खड़े होकर देखते रहोगे कि क्या पहनूं यार, मैं क्या पहनूं, ये पहनूं वो पहनूं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि हमेशा कल सुबह का जो प्रिपरेशन हुआ आज रात को ही कर लिया करो करके, ताकि सुबह के टाइम पे डिसीजन फटीग ना हो। और ये चीज मैं तो कई बार एक्सपीरियंस करता हूँ, दोपहर को क्या खाया जाए, ऑप्शंस बहुत सारे हैं मगर क्या खाना है उसका चॉइस हम बहुत ही डिफिकल्टी ले पाते हैं। बट ऑलरेडी अगर हम डिसाइड करके रखते हैं कि मैं इन इन चीज़ों के बीच में से ही कुछ खाऊंगा, दो या तीन ऑप्शंस में से ही कुछ खाऊंगा, हम लिमिट करेंगे खुद को, तो हम इजीली डिसीजंस बना सकते हैं। तो कम ऑप्शंस जितने होंगे डिसीजन ईजिली बन सकता है, और ज़्यादा ऑप्शंस जितने होंगे डिसीजन उतना डिफिकल्ट हो सकता है। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे मुझे ना जाकिर खान के इंटरव्यू में बोली गई एक बात बहुत ही अच्छी लगी, वैलिड लगी। तो बेसिकली वो बता रहे थे कि जब बेरोजगारी के दिन चल रहे थे तो उन्हें लगता था कि भाई बस मुझे कोई काम दे दो, मैं आग लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जमीन आसमान एक कर दूंगा करके। जब मिला मौका काम करने का तो उन्होंने बोला कि मैंने रियलाइज किया कि भाई सिस्टम में मीडियोक्रिटी जो है वो एक नेसेसिटी बन जाती है। तुम बहुत औसम काम दो तीन दिन में मत दो, शाम तक काम का रिजल्ट दे दो, चाहे वो मीडियोकर रिजल्ट हो चलता है, क्योंकि डेडलाइंस हैं। और बहुत ही सही बात लगी मुझे, क्योंकि बाहर से देखते हुए तो हमें लगता है कि अरे ये कर लेते, वो कर देते, ये मैं कर देता, वो सब मैं कर देता, अरे नथिंग डूइंग भाई। जब मैदान में उतरते हो ना तब पता चलता है कि कितने पानी में लोग, कितनी दिक्कतें होती हैं, कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बाहर से खड़े होके किसी और के काम को जज करना बहुत आसान है, और जब खुद उतर के वो काम हम करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो कितना डिफिकल्ट होता है। तो एक ही चीज़ हम कर सकते हैं, वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग और काइंडनेस की। ठीक है, वो अपने बैटल्स पे है, मैं अपने बैटल्स में हूँ, कोई हेल्प अगर मैं कर सकता हूँ तो गुड, नहीं तो तंग नहीं करना मुझे और जज नहीं करना। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ओलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो सीक्रेट है मोटिवेशन का सीक्रेट। तो क्या है मोटिवेशन का सीक्रेट? मोटिवेशन का सीक्रेट यही है कि इसका कोई सीक्रेट नहीं है। मोटिवेशन एक्चुअली काफी फ्लीटिंग एक फीलिंग है जो कभी आती है कभी जाती है और बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाती है ज्यादा देर तक। तो मोटिवेशन इज नॉट नेसेसरी। मोटिवेशन जस्ट एक चेरी ऑन दी टॉप जैसा है। बट अगर कुछ चीज़ अगर हमें चाहिए तो वो है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। ये दोनों अगर चीज़ें हैं अगर साथ में तो धीरे धीरे धीरे बिना मोटिवेशन के भी हम काम करेंगे। तो जैसे कि कुछ लोगों के बारे में आपने देखा होगा, सुबह हो शाम हो गर्मी हो ठंडी हो या फिर बारिश हो कुछ भी हो, अगर उन्होंने बाहर निकल के दौड़ने का डिसाइड किया है तो वो दौड़ेंगे। अगर उन्होंने कुछ पढ़ने का डिसाइड किया तो पढ़ाई करेंगे। तो कुछ भी सिचुएशन हो तुम्हारे आसपास, जो काम तुम्हें करना है वो तुम करोगे तो वहां पे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। सो मोटिवेशन जो है एक फ्लीटिंग फीलिंग है जो जैसे कि मैंने बोला आती है चली जाती है, मगर लॉन्ग लास्टिंग जो एक चीज अगर आपको चाहिए तो दैट इज डिसिप्लिन। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो. ओह नो, फिर से स्कूल. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
1: एंड
3: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
3: कॉल 7022525.
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
4: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही प्यारा सा मेमोरी जो मैं शेयर करना चाहूंगा, और एक बहुत ही डरावना रियलिटी भी शेयर करना चाहूंगा। तो बात यह है कि जब हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, तो बहुत सारे अंकल लोग, भैया लोग आके हमसे बोलते थे कि भाई यार एक बॉल खिला दे या फिर तीन बॉल खिला दे, ठीक है। तो हम भी ऐसे उन पर दया खा के, अरे चलो चलो यार आओ खेल लो करके करते थे, ठीक है। बहुत ही ऐसे पावरफुल फील करते थे। मगर अभी जब हम बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार जाके उनसे मांग लूँ एक बार एक बॉल खिला दो करके या फिर तीन बॉल खिला दो करके। तो कहते हैं ना कि भाई कर्मा जो है वो वापस आता है, समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ अभी उस एज में मैं पहुंच चुका हूँ जहाँ पे बच्चों को देख के मुझे अपना बचपन याद आता है कि यार मैं तो बहुत फन करता था यहाँ पे इस टाइम पे, ये इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसने रख दिए। दैट इज अडल्टिंग डूड, दैट इज अडल्टिंग, और एंजॉय करना है इसको भी, और क्या कर सकते हैं ना। और यही बात बोलते हुए अपनी फेवरेट क्रिकेट यादें जो हैं जरा मुझे भेजिए 3311063 पर, या फिर अगर आप फुटबॉल भी खेलते थे तो भी उसके बारे में बता सकते हैं। बचपन में जो भी आप गेम खेलते थे उसके बारे में मुझे मैसेज कीजिए 3311063 पर मैसेज करके। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, ठीक है। ये रास्ता है एक ऐसे इवनिंग की ओर जहां पे आप जाके फन कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, स्कूल खुलने से पहले काफी मजे कर सकते हैं। अब उसे जरा मॉल जाना है आपको 27 अगस्त को, मगर उससे पहले एक बहुत बड़ा टास्क है। वो टास्क काफी सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको सीधा जाना है रेडियो ऑलिव के वेबसाइट पे, विच इज olive.qa, और उस पर एक फॉर्म दिखेगा आपको, एक बैनर दिखेगा, पहले उस बैनर पे क्लिक कीजिए, एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए, और सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलेगा बहुत ही बढ़िया से एंटरटेनिंग सा एक बैक टू स्कूल बैश का हिस्सा बनने का, जो होने वाला है अबू सिद्रा मॉल में 27 अगस्त को। मैं यही बोलूंगा, जाइए रजिस्टर कीजिए, क्योंकि आपके पास मौका है इसे एक बहुत ही बेहतरीन शाम का हिस्सा बनने का। और यही बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holdings.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास
2: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
2: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
4: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-561-23.

करती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक चीज के बारे में मैं जरा ऑब्जर्वेशन अपना शेयर करना चाहूंगा। देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में बढ़ती जाती है या फिर टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हमारे लाइफ में होता रहता है, लाइफ में कन्वीनियंस भी बढ़ता रहता है। पहले के ज़माने से अगर हम अभी कंपेयर करें तो लाइफ बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो चुकी है। अगर हमें कहीं जाना है तो किलोमीटर तक चलना नहीं पड़ता, गाड़ी है जाने के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें अपने किसी खास जो कहीं और रहते हैं या फिर किसी और देश में रहते हैं उनसे बात करनी तो फ़ोन है। पहले तो चिट्ठियाँ होती थी, फिर फ़ोन आ गए, वायर्ड फ़ोन हट के आप तो स्मार्टफोन है, सीधा एक ही बार में वीडियो कॉल कर सकते हैं, फेस टाइम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं ना। तो बहुत ही कनेक्टेड हो चुका है ये वर्ल्ड जो है। मगर टेक्नोलॉजिकली हम कनेक्टेड हैं, मगर ह्यूमनली क्या हम कनेक्टेड हैं नहीं हैं, ये सवाल अभी भी काफ़ी रेलेवेंट है। क्योंकि कई बार जब चार लोग एक साथ बैठते हैं, सबकी गर्दनें झुकी होती है फ़ोन के सामने, आपस में कोई बात नहीं करता है। तो कन्वीनियंस के इस जुमले में हम अपनेपन को और अपने आप को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं या फिर इग्नोर करते जा रहे हैं। तो जैसे कि एक मूवी में संजय दत्त ने एक डायलॉग बोला था, मैं उसको जरा रिफ्रेश करना चाहूँगा कि ये तो कन्वीनियंस का जुमला है लाले इसमें हम ही सैक्रिफाइस होते हैं, और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। Here we go.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही ऑसम बात जो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। तो देखिए, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि अगर हमें अपने हैबिट्स को चेंज करना है तो आइडेंटिटी शिफ्ट यूज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वर्कआउट करना है या फिर आपको पढ़ाई करनी है, हर दिन आपको पढ़ाई करनी है, तो आप कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। सिंपल एज इन कि आपको अपने आइडेंटिटी के साथ थोड़ा सा एक चेंज लेके आना पड़ेगा। तो यूजुअली अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हम क्या बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू स्टडी। सो चेंज दैट, उसकी वर्डिंग थोड़ी चेंज कीजिए। बोली आई एम अ सीरियस स्टूडेंट, आई स्टडी एवरी डे। अगर आपको वर्कआउट करना है तो बोलिए कि आई एम अ पर्सन हु वर्क्स आउट एवरी डे, हु टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ, और टेक्स केयर ऑफ अवर हेल्थ कर। फिर अपने आप को एक नई आइडेंटिटी देने की कोशिश करते, तो धीरे धीरे हम अपने हैबिट्स को भी इवॉल्व कर सकते हैं। और यही बात बताते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतर। 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
4: Hi everyone, I'm Arman Malik.
5: I'm the number one.
4: 106.3 FM, Radio Olive. Jio Bindas.
6: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network. Radio.

0: सीधा जाइए रेडियो ऑलिव की वेबसाइट पे, जो है olive.qa। वहां पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा बैनर दिखेगा बैक टू स्कूल लिखा हुआ, उस पे कीजिए क्लिक। एक आएगा फॉर्म, फॉर्म कीजिए फिल, और उसके बाद आपको मौका मिलेगा एक बहुत ही बढ़िया इवनिंग का हिस्सा बनने का। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई स्कूल खुलने वाले हैं, मगर स्कूल खुलने से पहले बच्चों के साथ फन करना तो हम भी चाहते हैं। तो आपके पास मौका है अपने बच्चों के साथ इस इवनिंग का एक बहुत ही बढ़िया हिस्सा बनने का, जहाँ पे फन होगा, गेम्स होंगे, काफी एंटरटेनिंग एक इवनिंग होगा। तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने वालों में से सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को जो है कॉल जाएगा बैक टू स्कूल बैच का हिस्सा बनने का, जो हो रहा है अबू सिद्रा मॉल में 27 अगस्त को। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan, you name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
1: हमने लगा और हो जा रिचार्ज।
2: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
1: Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by
0: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जो मैं हर दिन याद दिलाता हूं, आज फिर याद दिलाऊंगा, वो यही है कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जाने क्या किया, सीधा जाइए इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव .qa सर्च कीजिए, पेज ओपन होगा। तो क्या करना है, अगर वहां पे फॉलो दिख रहा है तो फॉलो बटन दबाइए एक बार, फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, दिल जीत लिया आपने हमारा। उसके साथ साथ आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट सेव कर सकते हैं, हमें सुनते हुए आप वीडियो बना

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: ले लगा और हो जा रिचार्ज।
0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM पर, जियो बिंदास।

0: तो भाई धीरे धीरे टाटा बबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और पार्टी तो भाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से बाकी है, क्योंकि वीकेंड भी है। तो फिर सिमरन आएगी थोड़ी देर में आपके साथ पार्टी करने के लिए, मस्ती करने के लिए, आपकी इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने के लिए। तो खुली बाहों से सिमरन का स्वागत कीजिएगा, जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार सिमरन को दीजिएगा। जाते जाते जाते यही दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। तो फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर ऑफर। लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

आपके जहन में आना चाहिए, काम का ख्याल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन एक ख्याल जो आज पूरे दिन आपके जहन में रहा, कैसा रहा आपका आज का दिन, उसके बारे में आप मुझे बता दीजिए। 3311063 पर आपके मैसेज का इंतजार कर रही हूँ। और बताओ सर, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, कोई बात नहीं। वीकेंड की लौट के बात करते हैं, अभी तो आए हैं, 4 घंटे अपने ही है बेबी।

0: बावरा समन भागे तेरे पीछे, बावरा समन, बावरा समन।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
4: हाय एवरीवन, मैं हूँ अरमान मलिक, 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ।
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

ਹਾਂਜੀ आपके सामने वाली खिड़की में कौन घर पे बैठने वाले बाहर जाने वाले क्या करने वाले हैं। जब वीकेंड आता है तो हमेशा मैं पिज्जा पास्ता की बात जो है वो जरूर करती हूँ, ना चाहते हुए मेरे मुंह से इसकी बात जो है वो निकल ही जाती है। तो मेरे पास ना एक फनी चीज है, पता नहीं आपको कितनी फनी लगेगी, लेकिन जब कभी कभी अंग्रेजी की हिंदी होती है ना वो काफी ज्यादा फनी हो जाती है। तो मैं ऐसे पिज्जा का कुछ तो देख रही थी तो जहां पर एक जगह का नाम था क्रेजी पिज्जा, ठीक है, सुनने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है क्योंकि इंग्लिश में है, लेकिन मैंने सोचा अगर इसकी हिंदी कर दी जाए तो क्या होगा, पागल पिज्जा कितना फनी हो जाता है यार। खैर, आप जो भी खाने वाले हैं आज, जो भी मजा करने वाले हैं करिए, लेकिन सैड ना बैठिए, ठीक है, अपने आप के साथ बैठना जरूरी होता है अगर आपका नो पीपलिंग जोन है, कभी कभी जो मेरे में भी आता है, लेकिन इस बार नहीं है, इस बार मेरा बाहर जाने का मन है, ठीक है। सो मैं जो करने वाली हूँ वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कल और परसों और नर्सों का दिन जो है बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है क्योंकि आरजेस के बर्थडे है। जी हाँ, कशिश एंड तनीषा का बर्थडे है कल, फिर उसके बाद 23 तारीख को मेरा बर्थडे आ जाएगा, तो अपना बर्थडे वीकेंड जो है वो एकदम ऑन है। तो कौन कौन शेयर कर रहा है हम तीनों के साथ ये वाला बर्थडे आप ज़रूर बताइएगा। मैसेजेस भेजते हो, जो भी वॉइस नोट्स भेजते

0: और गेदर ये जियो विनाज।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
1: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ.
5: Zabardast evening. Make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

0: लोगों के लिए चला रहे हैं और एक नंबर सेलिब्रेशन जो है बैक टू स्कूल बैच में होने वाला है। आपके बच्चों को हम बुला रहे हैं, आपको भी बुला रहे हैं। इस 27 तारीख को दोपहर 3 से लेकर 7 बजे के बीच में हम खेलने वाले हैं अबू सिद्रा मॉल में। ये मस्त वाले गेम्स, मस्त वाला मजा जो है हम करने वाले हैं। बट ये मजे के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्विकली कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगी, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी रजिस्ट्रेशन हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। सो olive.qa पे जाके आप अपने आप को बैक टू स्कूल का फॉर्म फिल करके रजिस्टर करवा लीजिए, ठीक है। सिमरन गौरे आपके साथ, जियो बिंदास चको फटे।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas. Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
1: Oh no! Phir se school! अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
2: कॉल 7022525.
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
0: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: करते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

योगिता दी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर तोड़े नाल। और अब मैं बात बताती हूँ जिसको देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। वरुण धवन की रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने बोला है कि मैंने खेत लिया है और उन्होंने उनको इस चीज को अपनी लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट बताया। उन्होंने बोला है कि भाई मैंने खेत ले लिया है, अब मैं इस खेत में बैठ के खुली हवा में चाय और बिस्किट जो है वो खा सकता हूँ। सो या उन्होंने एक फार्म लिया है जिसके लिए वो सुपर डुपर एक्साइटेड है। और लाइफ में चाहे आपको जितनी मर्जी गाड़ियाँ घर ये मिल जाए, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है ना आपकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। जिस तरह से वरुण धवन की लाइफ में ये स्पेशल चीज़ है कि मैंने खेत ले लिया है। यार हम शहर की लाइफ में रहते हैं, गाड़ियाँ पेट्रोल ये धुआं पोल्यूशन, लेकिन जब खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलता है ना तो वो अलग ही लेवल का सीन रहता है कि भाई ग्रीन ग्रीनरी जो रहती है, खेत लहरा रहे होते हैं, हवा चल रही होती है और आप बैठे हो, बस यार वही चीज़ जो आपको सुकून मिलता है ना, मज़ेदार होता है वो।

मोनिका नहीं सिमरन कौर है लेकिन इतना है कि जब आप गाना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एक तो वीकेंड के हिसाब से जो मूड जो है वो आपका वैसा होना चाहिए। सिमरन ये वाला गाना सुना दो, अगर गाने का मन है तो गा के भी आप मुझे बता सकते हो, लेकिन गाना जो है वो शैड नहीं होना चाहिए। बोल यार, इस फिल्म का ट्रेलर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा।

0: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी टू शॉप।
2: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
3: Salaam, pranam, namaskar, vanakkam, I am Jackie Shroff, Radio Olive, Bolo Bindas.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: आपके और मेरे दोस्तों के लिए। वीकेंड का टच डालते हैं। अंग्रेजी बीट दे मां गया जी, बीट केड़ी हैगी है मौसम दी, ओ चेक कर लेने हां। मौसम मौसम के हाल कुछ इस तरह से है, 39 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 39 डिग्री सेल्सियस एंड लोएस्ट टेम्परेचर आज का 33 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम है 42 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिड जो है ऑफकोर्स रहने वाला है, अभी ह्यूमिडिटी 39% है, लेकिन वो जो 70-75 वाली देखी है उससे तो अच्छा ही है इतनी ह्यूमिडिटी जो है वो रहे, लेकिन धीरे धीरे करके इसी ह्यूमिडिटी ने भी कम हो जाना है, मौसम अच्छा हो जाना है, इससे ही सोच सकते हैं हम। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जी ओम बिंदास।
1: Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour. Song of the
2: hour. Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai. Cool song.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. Apna hala recharge karo aur pao free data ya minutes ka surprise. Claim karo Ooredoo app par. Experience more with Ooredoo.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: हां जी आपकी जरूरत है क्योंकि बैक टू स्कूल बैच जो है वो हम करने वाले हैं इस 27 अगस्त को शाम को 3 से लेके शाम के 7 बजे तक हम बहुत सारा फन जो है इसमें करने वाले हैं, लेकिन ये फन कहां पर होगा? अबू सिद्रा मॉल में होने वाला है, बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन जो है करवाना पड़ेगा, तो बहुत लिमिटेड रजिस्ट्रेशन हैं, वो बहुत जल्दी बंद हो जाएंगी। फिर आप बोलोगे यार बंद हो गई और हमने करवाया नहीं, आज का काम कल पे मत छोड़िए और अभी के अभी रजिस्टर करवा लीजिए olive.qa पे जाके, वहां पे बैक टू स्कूल का फॉर्म फिल कर दीजिए। नैना का कसूर छोड़ो, जे तुसी टाइम ते रजिस्टर नहीं करवाया तो कसूर सारा तुहाडा ही होना है।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
2: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
3: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

बेचारा फ्रेंड जोन का हमारा 6:51 स्टूडियो की घड़ी बज गई। सिमरन कौर आपके साथ है, हैप्पी वीकेंड है। तनु एक नंबर गाने जड़े हैं सुना रही हूं मैं, और अब टाइम है और एक वर्ड यूज किया जाता है डे रूम। डे रूम सुनने में कुछ अलग लगता है, लेकिन इसको इसलिए यूज किया जाता है जब कोई इंसान बहुत ही बेसिक और अनइंटरेस्टिंग है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। लाइक एवरीथिंग अबाउट हिम इज डे रूम, लाइक इंटरेस्टिंग है ही नहीं है कुछ लाइफ में। लेकिन आपका वीकेंड एकदम इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जो आपका मन करे वो करे। ये बात मैं आपको हर वीकेंड बोलती हूँ, अपने आप को और आप लोगों को रिमाइंड करवानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि अगर आपका अकेले भी रहने का मन कर रहा है दैट्स कंप्लीटली फाइन, बाहर जाने का मन कर रहा है वो भी बहुत बढ़िया, दोस्तों के साथ मिलने का मन कर रहा है, या फिर किसी से लंबी वीडियो कॉल या फोन कॉल पे बात करने का मन हो रहा है, या फिर अपना फेवरेट वाला मील ऑर्डर करने का मन हो रहा है, भाई जो करना है करो, आपकी लाइफ है, आपका वीकेंड है यार। जियो बिंदास, खुश रहो।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.

और आज हम कौन सी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं? के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। 36 दिन में ये फिल्म जो थी वो कंप्लीट हुई थी। जी हाँ, सिर्फ 36 दिन में ये फिल्म कंप्लीट हुई थी। जो इसमें मम्मी टाइप्स बनी हुई है रीमा लागू, वो संजय दत्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनसे एक साल ही छोटे थे, और लेकिन फिर भी वो मम्मी टाइप्स उनकी बनी हुई थी उसमें। सो अगर मैं बात करूँ इस फिल्म के राइटर की, राइटर रीमा राकेश नाथ, एक्चुअली ये उनकी रियल लाइफ की स्टोरी थी एक तरीके से। जब उन्होंने साइन की थी फिल्म जवानी दीवानी, तब उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, और इसमें क्या हुआ था कि लेग जो थी वो दो जगह से टूट गई थी, एंड रॉड जो थी उनके लेग में लगाई गई थी, कॉलर बोन भी ब्रोक हो गया था, 11 स्टिचेस आए थे उनके ऊपर। तो अब फिर उनको ये लगा था कि भाई अभी लाइफ ऐसी हो जाएगी कि मैं ऐसे ही चलूंगी कि मैं सही तरीके से सीधा जो है वो नहीं चल पाऊंगी, एंड वो अनमैरिड भी थी, पता नहीं कोई उनके साथ शादी करेगा कि नहीं करेगा। सो ये जो कैरेक्टर था ना, वो संजय दत्त में दिखाया गया था पूरा इस फिल्म में, साजन में, राइट। सो मैं आपको बताऊंगी इस फिल्म के बारे में और भी बहुत सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Jackman की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉन स्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले

0: काजल फिल्म से आप ये गाना सुन रहे हैं। फिल्म के बारे में बात करते हैं जिससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जो कि आपको और हमको नहीं पता, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो साजन फिल्म के बारे में मैं आपको बताती हूँ। आयशा जुल्को को पहले इस यू नो माधुरी दीक्षित के रोल के लिए जो था वो लिया गया था और वो पहले दिन शूटिंग पे भी आई थी। उसके बाद मतलब इतना ज़्यादा उनको फीवर हो गया था कि उनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर माधुरी दीक्षित को ये रोल जो था वो मिला। सो आमिर खान को जो था इस फिल्म की स्क्रिप्ट दी गई और आमिर खान को अमन या सागर की चॉइस करने के लिए बोला गया और आमिर खान को स्क्रिप्ट काफी ज्यादा पसंद आई। उन्होंने बोला कि यार ये फिल्म काफी ज्यादा यू नो आगे जाने वाली है और ब्लॉकबस्टर जो है वो होने वाली है, बट समहाउ वो जो रोल उनको दिया गया था उसके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाए। होता है ना किसी किसी आर्टिस्ट को वो कनेक्ट नहीं कर पाते कि अगर ये रोल मैंने किया तो मेरे पे ये रोल जचेगा कि नहीं जचेगा, तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए उन्होंने ये रोल जो था वो नहीं किया। एंड ऐसा भी मानते हैं कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मतलब दोनों का प्यार मोहब्बत जो था वो ऐसा वाला कोई सीन था कि हाँ ठीक है अट्रैक्टेड थे एक दूसरे की तरफ। एंड जावेद अख्तर को बोला गया था इस यू नो फिल्म के जो गाने थे उसके लिरिक्स लिखने के लिए, बट सलमान खान के फादर सलीम खान के साथ उनका कुछ लफड़ा था, फिर लफड़े के चलते जावेद अख्तर का म्यूजिक रिमूव कर दिया गया और समीर जो थे वो इसमें आ गए, उन्होंने इस फिल्म के गाने जो थे वो लिखे थे। सो या ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। यू वेलकम। रियलिटी चेक करते हैं और इस घंटे हम नेम गेम भी करने वाले हैं। बेबी हैप्पी वीकेंड।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: कर फट जाए।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

जिंदगी का सबसे बड़ा रियलिटी चेक ये है कि तुम्हें ही तुम्हारा सब संभालना है. एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, इसके बारे में किसको पता है? सिर्फ और सिर्फ आपको पता है. सो दुनिया उसके बारे में क्या कहती है, चार लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उनको कितना फर्क पड़ेगा कि अगर आपने ये कर लिया या वो कर लिया, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आपको सब अपना अपने आप ही संभालना है. तो आप जिस दौर से गुजर रहे हो उसके बारे में सिर्फ आप ही फील कर सकते हो, कोई और फील कर नहीं सकता. सो मेक श्योर कि आप किसी को अपनी लाइफ में उतना ज्यादा वैल्यू मत दीजिए कि वो आगे एक तो लाइफ में आपकी बैंड बजी हुई है और वो इंसान भी बैंड बजा दे और आपको ये लगे कि अगर मैंने ये वाला स्टेप लिया या फिर मैं ये लिया तो वो सामने वाला वो क्या सोचेगा. भाई आपको सोचना है आपकी लाइफ के बारे में, आपको संभालना है आपको अपनी लाइफ में, इतना ध्यान रखिएगा. बस उतना यार, बी हम्बल बी काइंड. लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, मैं हमेशा बोलती हूँ और मैं बार बार बोलूंगी, रिमाइंड करवाऊंगी आपको कि भाई हमको काइंड रहना है लोगों के लिए. वापस दौड़िए, नेम गेम खेलते हैं. अरे करो जो दिल में आए. हैप्पी वीकेंड है जी.

0: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: Fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

क्या गाना है यार, फिल्म भी कमाल की है यार, आप लोग भी कमाल के हो यार, क्या प्यार है यार। ऐसा ही प्यार चाहिए, और मेरा प्यार देने का तरीका है आप लोगों को एक साथ एक ही बारी में, क्योंकि सबका नाम जो है वो लेना इजी होता है, लेकिन सबके मैसेजेस का रिप्लाई करना हर बार इजी नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। इसीलिए अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम आप अपने लिख के मुझे व्हाट्सएप करेंगे वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ। सो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे जितने भी आप नाम लिख सकते हैं लिख दीजिए, ठीक है। मैं अभी अभी बोल दूंगी। मुकेश जी, ए के जी, शाहबाज जी, डेजी जी, सुबिन जी, आसमा जी, अर्शिया जी, मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सोहेल जी, अदील भट्ट जी, लतीफ़ जी, थैंक यू सो मच। शाहीन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। लंबी लिस्ट अगर आप लिख रहे हैं तो वो मत करेंगे, क्योंकि मैं मैसेज ओपन नहीं करती। एक के बाद एक नाम लिख दीजिए आप। जस्मिन अमानाल जी, थैंक यू सो मच। लरीफ जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। प्लीज़ प्ले सॉन्ग नहीं होता दोस्त, अभी नाम ले रही हूँ। नगेंद्र जी, थैंक यू सो मच। किरण जी, थैंक यू सो मच। जॉली जी, थैंक यू सो मच। अश्कर जी, थैंक यू सो मच। जैस्मिन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। शाहजाद जी, फरहान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली नाम लिखिए अगला गाना शुरू होने वाला। सौजन्या जी, थैंक यू सो मच। शहजाद जी, थैंक यू सो मच। फरहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। दानिश जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। आयजान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। तीरथ प्रसाद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली अगला गाना शुरू होने वाला है फटाफट। भीम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रामी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया बेटा, अब आप थैंक यू लिखो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना दो। अगले घंटे हम खेलने वाले एक चुटकी सॉन्ग, उसके लिए भी तैयार हो जाओ।

0: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
3: ਸਸਿਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਪਜਨ ਮਾਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM, ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।

0: है दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: गाने आप लोगों के लिए चल रहे हैं क्योंकि इट्स वीकेंड, हैप्पी वीकेंड लव. और अब हम खेलेंगे
1: रेडियो ऑलिव पर.
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
0: एक चुटकी सॉन्ग को जरा ध्यान से सुनिए. वैसे तो इसको ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत नहीं, जैसे ही मैंने प्ले किया आपको पता लग जाएगा ये गाना कौन सा है. सो बताओ ये गाना कौन सा है, गा के बताइए या बोल के बताइए, बट वॉइस नोट में बताइए, जो भी बताइए, लिख के मत बताइए. और एकदम एनर्जी वीकेंड वाली और सिमरन कौर वाली होनी चाहिए. हे सिमरन, अपना नाम बताइए और बताइए गाने का नाम और भेज दीजिए 3311063 पर. एक बार वापस से सुना दूं. सुंदर ये रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास. इंतजार कर रही हूँ 3311063 पर.
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
5: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: 29:39 सीधे 30 मिनट स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं और हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया बहुत
0: और एक चुटकी सॉन्ग क्या था ये गाना पहचानना कोई मुश्किल बात नहीं है
3: हे सिमरन
0: हाय बहुत बढ़िया दोस्त
3: ये जो आपने गाना बजाया है बहुत अच्छा गाना है बहुत एनर्जेटिक गाना है
0: है ना
3: और ये गाना है जुम्मे की रात है जुम्मे की बात है अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से थैंक यू जियो बिंदास
0: बड़ा मजा आता है जब कोई मेरे साथ इस एनर्जी से बात करता है
4: हेलो हाय सिमरन कैसे हैं आप
0: बहुत बढ़िया दोस्त
4: सिमरन जी ये सॉन्ग है

0: ओके फाइन, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हूँ और आप लोगों का जवाब सुनती हूँ.
1: हे सिमरन, दिस इज अनुभा.
0: हाय अनुभा.
1: सॉन्ग इज जुम्मे की रात है फ्रॉम द मूवी किक.
0: क्या बात है यार, मजा आ गया. थोड़ी देर में गाना भी प्ले करूंगी और बहुत बहुत शुक्रिया यार.

0: ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हमारे सोशल मीडिया पे ताकि उनके थ्रू आप उनको विश कर सके और मैं आपसे मिलती हूँ सैटरडे शाम को 6 बजे और ऑफ कोर्स उनके बाद मेरा बर्थडे भी आने वाला है तो सैटरडे को आपको बताऊंगी मैं ठीक है सो खाने पीने रहो ऐश करते रहो चेहरे बड़े वाली स्माइल को किसी का दिल मत दुखाना बी नाइस टू एवरीवन यार गुड नाइट जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो
1: जी हाँ भाई बहनों झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है रफ्तार रफ्तार देखो आंख मेरी लड़ी है

0: इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: 3FM. अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ.
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश.
0: अपने वार्डरोब को रिडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर

0: सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर।

फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशन खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉन स्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले

0: You are listening to Radio Olive.
1: सुनो
2: आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
3: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
2: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
4: This is

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

Ladies and gentlemen, let me tell you the story of Mr. Sutro. 1, 2, 3,

Betty Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।